आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कोच डेव डोरेन के नेतृत्व में टीम इस बार अपनी डिफेंसिव लाइन को मजबूत करने के लिए आज एक स्पेशल क्लोज डोर स्क्रीमेज, मतलब जो मैच रहती है, प्रैक्टिस मैच खेल रही है। फैंस को इस सीजन में टीम से काफ़ी उम्मीदें हैं। देन डरम में ड्यूक के कैंप से खबर है कि उनके नए क्वार्टर बैक शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं और आज दोपहर टीम की एक अहम स्ट्रेटजी मीटिंग होने वाली है। कॉलेज स्पोर्ट के इस पूरे रोमांच पर हम सब की नज़रें जो है वो बनी रहेगी। एंड यू नो लाइक खेल का तो मज़ा अलग ही होता है और खेल के साथ फिल्म जगत की बातें ना हो ऐसा निर्वाणा नाइट्स पर कभी हो सकता है क्या? तो एंजॉय करते हैं मनोरंजन की कुछ बातें, माया नगरी मुंबई की कुछ बातें। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ निर्वाणा नाइट्स पर। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज।

है रेडियो नायरा पर वन नाइट्स। वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आपकी हम डे की यानी आज वेनसडे की शाम। वीकेंड का प्लान कुछ कुछ लोग तो अभी से कर देते हैं एंड क्या आप भी उन लोगों में से हो जो वेनसडे को वीकेंड का प्लान करते हो? मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि टू बी फ्रैंक मुझे तो वीकेंड बहुत कम लाइक एंजॉय करने को मिलता है, लेकिन मैं एंजॉय करते रहता हूँ जैसा ही मुझे वक्त मिलता है। एंड अभी वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। मुंबई के गलियारों से खबरें आ रही है एंड खबर ये है कि शाहरुख खान और सुजय घोष की किंग को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान की मच अवेटेड जो फिल्म किंग, आज सुबह सुबह इस फिल्म के सेट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुजय घोष के निर्देशन में बन रही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्केड्यूल इस महीने के आखिर में लंदन में शुरू हो जाने वाला है। एंड यू नो किंग में जो किंग खान का लुक है वो तो अलग ही है एंड बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये लुक को कॉपी करते हुए नजर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड नीतेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म रामायण को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर आती रहती है। आज सुबह फिल्म के मुंबई सेट से रणबीर कपूर और एक धुंधली सी जो पिक्चर है वो लीक हो गई है, जिसमें वे भगवान श्री राम के अवतार में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में रणबीर कपूर के लंबे बाल, चेहरे पर गजब का तेज और पारंपरिक वेशभूषा दिखाई दे रही है। हालांकि मेकर्स ने सेट पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और नो फोन पॉलिसी लागू की है, फिर भी ये तस्वीर बाहर आ गई और आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दी। फैंस रणबीर कपूर के इस लुक की तुलना किसी दिव्य कलाकृति से कर रहे हैं। इस फिल्म में यश रावण और साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आने वाली है। एंड ट्रेलर ने तो ऑलरेडी धूम मचा दी है, लेकिन आज जिस तरह से पिक्चर वायरल हो गई है उसने भी काफी हद तक धूम मचा दी है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल, एंजॉय करते हैं ये अगला।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड बॉलीवुड के रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए आज एक और बड़ी खुशखबरी है। टी सीरीज और अनीस बज्मी की आज सुबह से ही भूल भुलैया चार का आधिकारिक मुहूर्त जो है वो शॉर्ट पूरा कर लिया है। पिछले साल आई फ्रेंचाइज की सफलता के बाद मेकर्स इस बार हॉरर और कॉमेडी के डोज को दोगुना करने वाले हैं। एंड कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर क्लैपबोर्ड के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रूह बाबा इज बैक। इस बार डर और हंसी दोनों का लेवल अलग ही होगा। आज से फिल्म का पहला स्केड्यूल मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब भूल भैया जो म्यूजिक है, ये सारी चीजें है, छिन छिन छिन छिन, वो थोड़ा अलग लेवल का ही है। एंड देखते हैं अभी भूल भैया चार में हमें क्या देखने मिल रहा है। वेल फिलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड एंजॉय सब लोग कर रहे हैं। हम डे जो है आज एंजॉय करते हैं। अगला एक गाना बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड चलते चलते बात कर लेते हैं संगीत के दुनिया की। आज सुबह ठीक 11 बजे अरिजीत सिंह का एक नया सिंगल ट्रैक फासले रिलीज हुआ है। ये एक बहुत खूबसूरत और रोमांटिक, रूहानी रोमांटिक गाना है, जिसे सुनते ही आपको जो है सुकून मिलेगा। अरिजीत सिंह के गाने ऐसे होते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में ना हो तो भी आपको लगेगा कि आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपका ब्रेकअप भी नहीं हुआ हो, आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा हो, फिर भी गाने सुनने के बाद आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। रिलीज होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर इस गाने ने YouTube पर मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। अगर आपने आज सुबह की भागदौड़ में इसे मिस कर दिया है तो इस बुलेटिन के तुरंत बाद आप ये गाने को सुन सकते हैं। अरिजीत सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड के गाने नहीं गाऊंगा, लेकिन खुद के इंडिपेंडेंट गाने जो है वो रिलीज कर रहे हैं। आवारापन 2 में भी उनका एक नया गाना आ चुका है। एंजॉय करते हैं फिलहाल।

नायर अपनी वन नाइट्स एंड अब वक्त हो चुका है आज की कहानी सुनाने का। तो आज की कहानी थोड़ा अलग है, यू नो, लाइक एक मशहूर हलवाई थे जिनका नाम था मक्खनलाल। मक्खनलाल जितने लाजवाब समोसे और जलेबियाँ बनाते थे उतने ही वो कंजूस और शक करने वाले इंसान थे। उनकी दुकान के गल्ले में रोज हजारों रुपए आते, लेकिन मक्खनलाल को दुनिया के हर इंसान पर शक रहता था कि कोई उनकी कमाई चुरा ना ले। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वफादार नौकर छोटू पर भी कड़ी नज़र रखी थी। छोटू सीधा साधा लड़का था, लेकिन मक्खनलाल रोज शाम को गल्ला गिनते समय उसे ऐसे देखते थे जैसे उसने कोई टाका डाला हो। एक दिन मक्खनलाल ने अपनी बरसों की कमाई से सोने के सिक्के खरीदे और उन्हें एक भारी लोहे के तिजोरी में बंद कर दिया। तिजोरी को उन्होंने दुकान के पीछे वाले गुप्त कैमरा में छिपा दिया, जिसकी चाबी वो हमेशा अपनी धोती के कमर में कंस के रखते थे। आगे क्या हुआ देखते हैं, मतलब सुनते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं अगले

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

हम सुन रहे थे मक्खन लाल की कहानी, एंड कहानी में क्या हुआ कि चाबी जो वो धोती में रख देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक सुबह, आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ, एक सुबह जब मक्खन लाल ने दुकान खोली और चाय उबलने के लिए रखी तो उनकी नज़र पिछले वाले कैमरा के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। मक्खन लाल के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर गिर गया। वो भागते हुए अंदर आए। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भारी भरकम लोहे की तिजोरी गायब थी, खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। मक्खन लाल ने ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, माल लुट गया, मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी छोटू दौड़ते हुए आया। मक्खन लाल ने तुरंत छोटू का कॉलर पकड़ लिया। तूने ही किया है ये, रात को तू ही दुकान के अंदर सोया था, इतनी भारी तिजोरी बिना किसी के मदद के कोई कैसे ले जा सकता है, बता कहाँ है मेरा सोना।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

तारा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

मक्खन लाल रोने लगे, जो जो चिल्लाने लगे, छोटू को डांटने लगे। छोटू भी रोने लगा एंड कहा, मालिक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो घोड़े बेचकर सो रहा था, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे छोड़ दो। देन तभी वहां से बनारस के सबसे चतुर और बुजुर्ग व्यक्ति मुंशी जी गुजर रहे थे। भीड़ देखकर वो रुक गए। पूरी बात सुनने के बाद मुंशी जी ने हंसते हुए कहा, अपनी मूंछों को तो पहले ताव दिया और बोले, मक्खन लाल शांत हो जाओ, चोर तुम्हारी तिजोरी लेकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चोर इसी शहर में है और मैं उसे आज शाम तक पकड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मक्खन लाल रोते रोते बोले, मुंशी जी जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बस मेरा सोना आप मुझे दिलवा दो। मुंशी जी ने कहा, ठीक है, पूरे बनारस में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि मक्खन लाल की तिजोरी चोरी हो गई है, लेकिन चोर बहुत बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि तिजोरी की असली चाबी तो मक्खन लाल के पास ही है, और वो तिजोरी ऐसा है कि बिना चाबी के अगर उसे हथौड़े से भी तोड़ा गया तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे सारा सोना पिघल जाएगा।

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड हिंडोरा पिटवाने की जो बात है ये कही थी एंड उसके बाद क्या होता है स्टोरी में आगे ये मैं आपको बताने जाऊंगा। मुंशी जी ने कहा कि ये है केमिकल डाला है एंड उसके बाद सोना पिघल जाएगा। मक्खनलाल हैरान रह गए, उन्होंने मुंशी जी के कानों में कहा लेकिन मुंशी जी मेरी तिजोरी में ऐसा कोई केमिकल। मुंशी जी ने मक्खनलाल के मुंह पे हाथ रख दिया और आंख मारते हुए कहा चुप हो जाओ और जैसा कहा है वैसा करो। देन दोपहर तक पूरे बनारस में ये अफवाह फैल गई कि मक्खनलाल की तिजोरी चुराने वाला चोर फंस गया है क्योंकि बिना चाबी के तिजोरी खोलना मतलब सोने का कोयला बन जाना। शाम को मुंशी जी जो है घाट पर एक पीपल के पेड़ के बीच बैठ गए, उसके पास मक्खनलाल और छोटू भी थे। मुंशी जी ने घाट पर घूम रहे एक तांत्रिक को बुलाया और कहा बाबा जरा अपनी विद्या से बताओ कि चोर चाबी चुराने कब आएगा। ऐसा कहा एंड उसके बाद क्या हुआ जान लेते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के

देन क्या हुआ कि तांत्रिक ने अभी अपनी आंखें बंद की थी और भीड़ में से एक आदमी हड़बड़ाता हुआ आगे आया। उसके हाथ में एक पोटली थी। वो मक्खन लाल के पैरों में गिर गया और रोने लगा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैं ही चोर हूँ। मैं अपने साथ तीन और आदमियों को लाया था इस भारी तिजोरी को उठाने के लिए। हमने दोपहर से इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब इस केमिकल और सोना जलने की खबर सुनी तो हमारे हाथ पाँव भूल गए। और ये आपकी तिजोरी, इसे सही सलामत पीछे झाड़ियों में छिपा के रखा है, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना। देन भीड़ ने चोर को पकड़ा। मक्खनलाल की तिजोरी मिल चुकी ही थी। मक्खनलाल ने राहत की सांस ली और मुंशी जी के पैर छू लिए। मुंशी जी, आपकी जो बुद्धिमानी है इसका कोई जवाब नहीं है। आपने झूठ बोलकर चोर को खुद चाबी के लालच में वापस बुला लिया। मुंशी जी हंसे और बोले, मक्खनलाल, चोर कभी मेहनत नहीं करना चाहता। जब उसे लगा कि उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और सोना राख हो जाएगा, तो वो चाबी के बिना तिजोरी खोल ही नहीं सकता था। इसलिए वो चाबी चुराने या सौदा करके वापस जरूर आने वाला ही था। इसे कहते हैं

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पुनीर वाला नाइट। कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान बेमतलब का शक करने लगता है किसी के ऊपर भी, उसे भरोसा नहीं रहता है। भरोसा रखिए क्योंकि भरोसे के ऊपर ही दुनिया कायम है। अगर आप भरोसा नहीं रखोगे तो मुंशीलाल जैसा होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। एंड वही है, 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड अब वक्त हो चुका है कि मैं लॉग आउट कर लूँ निर्वाणा नाइट्स शो को आज के लिए। कल मिलूंगा आपको सेम टाइमिंग पर, सेम शो पर, जिसका नाम है निर्वाणा नाइट्स। आप हमारे रेडियो नायरा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर। करना कुछ भी नहीं है, रेडियो नायरा जस्ट टाइप करना है, यू विल गेट एन ऐप। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरे हुए शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। कल मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आपका ये डे। एंड काम के बारे में कुछ टेंशन लेना नहीं है, जस्ट गो विथ फ्लो एंड डू योर वर्क। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एंड शब्बा खैर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का।

ಸಂದ್ರ ಹೇರ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾರಾ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

घट में जोत है, जोत में घट, जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे। ओम शिव गो रक्षक।

हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ऐसे प्यार करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1400

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-888-3838.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

Namaste, I am back on 107.9 FM, 99.9 FM SD4 for 90 AM and 99.9 FM SD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trying Loons and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu aur obviously masti to continue chalte rehne wali hai. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स दैट लास्ट। Join the Morrisville Chamber of Commerce for the No Luncheon on Thursday, August 13th from 11:30 a.m. to 1 p.m. at the Holiday Inn RDU Airport. Relationship building expert Liz Rossilli, founder of Sales Savvy, will share practical strategies for making meaningful connections and following up authentically. Everyone is welcome. Reserve your seat today through the Morrisville Chamber of Commerce.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Till all, kahi jaiye gari, sunte rahiye Monica ke saath Radio 9.

गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। मतलब आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक्स, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।
1: हेलो एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM एंड 99.9 FM HD3। वेलकम टू रेडियो नायरा पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट वैष्णवी, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू वेलकम अ ट्रू लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा एंड डांस। आवर गेस्ट टुडे इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, fondly known around the world as Indian Michael Jackson

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम, 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक।

वेलहमर ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sports fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. बजाने वाला है मिसमत करिए जरा एंजॉय करिए फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 4 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profits. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM, 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर।
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the lights, known as Mr. Saturday Night. Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart popping and topping with his high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो 9।

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी ट्री एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शो केसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई at the Greasy Creek Mineral and Gem Show in Spruce Pine. With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens, hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and passing on-site food and open to all ages. आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM है 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैन द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the MCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देखिए, पक्का लो।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिसविले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में. गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

क्या गाना था यार, एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3, 4, तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to the concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira Meko Jao Pakka Desi. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4, 101.9 एफएम एंड 1490 एएम, एंड दिस इज हेलो वैष्णवी लाइव शो, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड. वेल, अब जब अनलिमिटेड बातें हो ही रही हैं तो आपको समझ आ गया होगा ये है हेलो वैष्णवी शो. सो आज के दो घंटे हम इस तरीके से डेडिकेट कर रहे हैं उन छोटी छोटी कहानियों को जो कभी हमें हंसाती हैं और कभी आंखों को नम कर देती हैं और कभी बिना लेक्चर दिए लाइफ का एक ब्यूटीफुल लेसन दे जाती है, राइट? सो आप जहाँ भी हैं, कार में हैं या किचन में हैं या ऑफिस से घर लौट रहे हैं या बस एक कप चाय के साथ रिलैक्स कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर डे. तो आज का टॉपिक नहीं कहूँगी, बस मैं कहूँगी आज का सवाल बहुत ही सिंपल है. अगर आपकी लाइफ में किसी की छोटी सी काइंडनेस ने कभी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया हो तो वो क्या होगा, क्या है? आई मीन, हैव यू सीन समबडी विथ सो मच ऑफ काइंडनेस? अगर ऐसी छोटी सी कोई स्टोरी है तो आप हमें ज़रूर ज़रूर बताइए एट 9199998595 पर. कभी कभी हम सोचते हैं ना, लाइफ के बदलने के लिए कोई ह्यूज मोमेंट नहीं चाहिए, एक छोटी सी मोमेंट. लेकिन सच ये है कि एक स्माइल, एक फ़ोन कॉल, एक कप चाय या एक हॉनेस्ट आर यू ओके वाला मैसेज भी किसी का दिन बदल सकता है, राइट? किसी का दिन बदल जाता है, मतलब यू मेड माई डे, हम जिस तरीके से बोलते हैं जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं. तो दैट्स कॉल्ड. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी. तो चलिए मैं ही शुरू करती हूँ कहानी. अब बोल रहे हैं तो पहली कहानी ये है कि एक अपार्टमेंट के छोटे से बालकनी में ना मिस्टर मेहरा रोज शाम को दो कप चाय रखते थे, ठीक है? ही वॉज अलोन, बट दो कप चाय रखते थे और एक कप वो खुद पीते और दूसरा कप सामने वाली खाली कुर्सी के पास रखा रहता था. तो पड़ोस की रिया ने देखा और उसने एक दिन पूछ लिया, अंकल ये दूसरा कप किसके लिए है? तो मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराया और कहा, किसी भी इंसान के लिए जिसे आज बोलने से ज़्यादा किसी के सुनने की ज़रूरत है. तो रिया को जवाब थोड़ा फिल्मी लगा. वेल, लेकिन कुछ हफ्ते बाद बेचारी रिया की जॉब चली गई एंड देन घर पर सबको बताने की हिम्मत ही नहीं हुई. ऑफकोर्स ऐसा ही होता है. तो वो सीधा याद आया कि अरे वहाँ पे मिस्टर मेहरा जी की बालकनी, तो वो सीधा मिस्टर मेहरा जी की बालकनी में गई और बिना कुछ कहे खाली कुर्सी पर बैठ गई. अंकल ने कोई एडवाइस नहीं दी और सिर्फ ना रेज्यूमे, ना करियर, ना फ्यूचर पर लेक्चर, कुछ नहीं दिया उन्होंने. बस चाय उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, जब मन करे बोल देना. उस शाम रिया को जॉब तो नहीं मिली, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई, बट शी फेल्ट लेस अलोन. उसको इतनी पावर मिल गई ना. अगले महीने रिया को नई जॉब मिली और उसने क्या किया, उसने बालकनी के लिए तीसरा कप खरीदा. अब वो कुर्सी किसी और के लिए रेडी है. तो दोस्तों, हर प्रॉब्लम का ना इमीडिएट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हम किसी को अपना टाइम और अटेंशन ज़रूर दे सकते हैं. आज किसी अपने को सिर्फ इतना मैसेज भेजिए, नो रीज़न, बस पूछना था आर यू ओके. हो सकता है आपका मैसेज उनका दूसरा कप चाय बन जाए. तो चलिए सुनते हैं ये गाना और फिर मिलेंगे हम.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, एंड दिस इज हेलो वैष्णवी शो विथ योर होस्ट वैष्णवी, और जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं उन्हीं स्मॉल स्टोरीज बिग लेसन्स के बारे में। और मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताने से पहले ना, चलिए मैं आज की ही बात बताती हूँ आपको। मतलब मैंने ये हफ्ते में जो भी मैंने सुना है छोटी छोटी कहानियाँ, उनमें से एक ऐसी कहानी जो मुझे बताई गई थी, आई मीन इट वॉज शेयर्ड विथ मी, सो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्त हैं और वो एक्चुअली किसी से काम करा रहे थे, और आई मीन इट वॉज जस्ट लाइक नॉर्मल कुछ क्लीनिंग का वर्क वगैरह कराना था। तो उन्होंने किसी को बुलाया और उनसे काम करा रहे थे, एंड देन सडनली उस जगह पे एक लड़का आता है जो इज़ लाइक टीन बॉय, लाइक 16 ईयर ओल्ड या फिर 15-16 समझिए। वो आता है और कहता है कि अगर मेरे लायक कुछ काम है तो बताइए। अब हमारे फ्रेंड ने तो ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया था, और उनका था ऑलमोस्ट लाइक समझो कि छोटी सी यू नो पर आर रेट जो भी थी, जैसे $15 या $20 जो भी है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी दे चुका था और वो काम चल रहा था। एंड दिस बॉय केम एंड ही आस्क्ड कि क्या मेरे लायक कुछ काम है। तो फिर हमारे दोस्त ने कहा नहीं, काम तो नहीं है। तो फिर जिसको काम पे रखा था इन्होंने, मेरे दोस्त ने, उसने कहा कि देखो ये लड़के ने ना काम मांगा, ही डिडंट आस्क मनी। तो उसने क्या किया, जो काम करने वाला था उसने अपने पैसों में से जो उसे मिला था $20, उसमें से $5 का काम उसको दे दिया उस लड़के को। सो दिस काइंड ऑफ, मतलब अब इसे हम क्या कहेंगे, काइंडनेस। मतलब कितनी अच्छी बात हुई ना कि आपको काम मिला, आप कर रहे हो, और आपके पास जो है उसमें से आप किसी और को भी यू नो बांट रहे हो, और यू जस्ट दे रहे हो आप। तो इतना बड़ा दिल होना भी कमाल की बात है ऐसे लोगों के, जब हम देखते हैं या फिर मिलते हैं, या फिर ऐसा हमें लगता है कि ऐसा महसूस होने लगता है ना, अरे वाह ये क्या कमाल का काम किया इसने। तो ऐसा हुआ था मेरे दोस्त के साथ। और फिर एक और बहुत ही अमेजिंग बात हुई आज मुझसे, अगेन इट वॉज शेयर टू मी। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं और उनके साथ जो थे वो जा रहे थे, दो लोग फ्रेंड्स, और क्या हुआ कि सडनली, मतलब आफ्टर बहुत सालों के बाद, ठीक है, उन्हें अपने भाई से मुलाकात हुई, उनके भाई से मुलाकात हुई रास्ते में, और उनके भाई ने कहा कि ओह माय गॉड, लाइक इट वाज अ मोमेंट, इतने सालों बाद आप किसी से मिल रहे हो और वो भी अपने भाई से मिल रहे हो, तो क्या फील होता है आप लोगों को, है ना, इट्स सो इमोशनल अटैचमेंट कहूँ या फिर एक मिक्स्ड फीलिंग वाली चीज़। तो उस तरीके से, तो उनके भाई छोटे भाई थे, तो उन्होंने कहा कि सो भैया आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे सकते हो। तो इस भाई ने ना इतना ढूंढा, मतलब अपने बैग में पूरा ढूंढ लिया समझो, पूरा जो कुछ भी था सब ढूंढ लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वहाँ पर कुछ नहीं था उसके पास देने के लिए, एंड ही वॉज सो, क्या कहते हैं उसे, लाइक वो सोच में पड़ गया मैं क्या करूँ, मेरे पास है नहीं, और मेरे भाई इतने सालों बाद मुझे मिला, और उसने इतने सालों बाद मुझसे पूछा कुछ और मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, जो अपने फिंगर पर जो उसकी अंगूठी थी, इट वॉज अ गोल्ड रिंग, एंड उसने कुछ सोचे बिना उसे निकाल के अपने भाई को दे दिया। और मेरा दोस्त जो देख रहा था कि हो रहा क्या है यहाँ पे, जब वो देख रहा था ये सब कुछ, ही वॉज अमेज्ड, आई मीन लाइक क्या हो रहा है ये, मतलब कितनी काइंडनेस बची हुई है। हम कहते हैं कि नो वन इज काइंड या फिर काइंडनेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ऑलवेज देयर, इट्स ऑलवेज देयर, बस हम देखते नहीं हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई छोटी मोटी कहानी हो जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिली हो, या फिर आपको बहुत अच्छा लगा हो, या फिर आप एकदम यू नो अमेज हो गए हो कि ये क्या हुआ है. सो प्लीज़ आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एट 919-999-8595 पर. और चलिए इसी के साथ अब आप इस थॉट को दिल में रखिए और थोड़ी सी म्यूजिक थेरेपी का टाइम सॉन्ग के बाद मिलते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, एंड ऑल्सो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन radionaira.com पे। आप हमें कहीं से भी सुन सकते हैं, आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि अलेक्सा, ओके गूगल, हे सिरी, कहीं भी कहीं पर, आप कार में भी और घर पे भी और अपने फ़ोन में ऑफकोर्स आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में रेडियो नायरा बोल के टाइप कीजिए और डाउनलोड करिए, और ऐप स्टोर में जाइए और टाइप कीजिए रेडियो नायरा टू डाउनलोड एंड लिसन फ्रॉम एवरीवेयर एनी टाइम। हम आपके लिए बहुत अच्छे शोज लेके आ रहे हैं और काफ़ी सारे लाइव शोज हैं जहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर आप स्ट्रीम करिए। ऑल्सो अगर आपको हमें मैसेज करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @radionairausa। हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाइए और हमें मैसेज करिए और बताइए आपको शोज कैसे लगते हैं। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक यू वांट अस टू एड्रेस देन डेफिनेटली वी हियर यू। सो आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, फेसबुक इज़ ऑल्सो @radionairausa पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, वैसे हम आज की टॉपिक बात कर रहे हैं और ओके, लेट मी नो स्टॉप द बीजीएम, इट्स टू हाई। मेरी आवाज़ शायद आपको नहीं आ रही, तो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। वेल आई थिंक दिस इज़ सो क्लियर, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी अभी। तो हाँ, वेल हम आज बात कर रहे हैं उन्हीं छोटी छोटी कहानियों की, और छोटी कहानियाँ बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट विद बिग लेसन्स। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं @919-999-8595 पर। वेल आपको मैंने अभी तक 3 स्टोरीज बताई है और काफ़ी फ्रेश स्टोरीज है वो, ओके, बनाई हुई नहीं है, सच्ची वाली स्टोरीज है। तो नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं और जिसमें मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बोलूँगी जो मुझे भी कभी किसी ने बताया था, तो वो है सब लोगों के लिए जो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो, या फिर कोर्स ज्वाइन करने के लिए, या फिर फिटनेस स्टार्ट करने के लिए। ये तो सबकी प्रॉब्लम है। आई थिंक वो न्यू ईयर का फर्स्ट डे रेजोल्यूशन टू स्टार्ट माय फिटनेस, वो आता ही नहीं है, हमेशा कल मेरा जाता है वो। और या फिर दिल की बात कहने के लिए, हम हमेशा अपने दिल की बात कहना ही चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्यों? कभी सोचा है आपने? वेल, अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, और अगर आपके दिल में कोई भी बात हो तो आप उसे ज़रूर ज़रूर जिसे भी बताना चाहते हैं उन्हें बता दीजिए, क्योंकि दिल को भारी मत कीजिए। इट्स हैवी हार्ट लेके ना आप खुश रहोगे, ना आपके ऑपोजिट वाले खुश रहेंगे, ना आपके सराउंड में जितने भी लोग हैं वो लोग खुश रह पाएंगे। तो उससे बेहतर ये होगा कि अगर आप दिल खोल के बता दो। बस वो था, वेल एडवाइस नहीं, वेल कहानी 3 पे जाते हैं। तो दो बीज के बारे में, आई मीन 2 सीड्स, ओके, मिट्टी के अंदर 2 सीड्स पड़े थे और पहले सीड ने कहा, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी रूट्स को ना ज़मीन में भेजूँगा और सनलाइट की तरफ बढ़ूँगा। नाइस पॉइंट, राइट? और उसने पुश किया। मिट्टी हैवी थी, रेन भी अनप्रिडिक्टेबल, एंड फिर भी

but he never discovered what he could become. So सेफ्टी और ग्रोथ ना कभी कभी ऑपोजिट directions में खड़े होते हैं, और करेज का मतलब फियर का डिसअपियर हो जाना है. नहीं, यू नो इट्स नॉट जस्ट कि आप डर नहीं रहे हो, इवन दो यू हैव दैट करेज, स्टिल करेज का मतलब है फियर के साथ भी एक स्मॉल स्टेप लेना, आगे बढ़ोगे आप. तो आज का यू नो आपका वन स्मॉल स्टेप क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए, कुछ तो होगा, है ना. हो सकता है कोई फॉर्म फिल करना हो, या फिर कोई यू नो कोई 10 मिनट्स वॉक करने जाना हो लेकिन नहीं जा रहे हो, या तो आलस है, या तो नहीं जाना चाहते हो, या तो पता नहीं क्या, या फिर एक कॉल जिसे आप करना चाहते हो लेकिन वो आप कॉल कर नहीं रहे हो. कुछ सोच के ये होगा तो वो होगा, तो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा. सो बस वैसा मत कीजिए, जो भी करना है जस्ट डू इट. जो होगा वो बाद में देखेंगे, जब तक करोगे नहीं तो रिजल्ट क्या देखोगे, राइट. तो ये थी छोटी सी स्टोरी, और वेल अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी स्टोरी है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एट 919-999-8595 पर. और चलिए अब सुनते हैं एक गाना, और उसके बाद हम वापस आएंगे. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ कमिंग फॉर यू. सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे. चलिए इस गाने को सुनते हैं.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज हेलो वैष्णवी शो। और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। और उन्हीं अनलिमिटेड बातों में से आज हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी कहानियां, छोटा सा काइंडनेस जिसकी वजह से हमने कुछ सीखा या फिर हमें बहुत अच्छा लगा, एक मुस्कुराहट आ गई जब हमने देखा एक छोटी सी काइंडनेस, एनी काइंड एक्ट वुड मेक यू हैप्पी, स्माइल, और बहुत ही एक पीस लेके आता है वो दिल को, राइट? होता है ना ऐसा हमारे साथ? तो उसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कहानी मैं आपको अपनी ही बताती हूँ। तो एक बार मैं अपनी कार में जा रही थी, एंड आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 7:30 PM ऐसा ही कुछ। तो बाहर निकली और देखा तो तो गाड़ी रुक गई। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मुझे कि ये गाड़ी रुकी क्यों, और वो भी ऐसी जगह रुकी जहाँ पे ना थोड़ी दूर में जाते ही ऐसे कोई मैकेनिक मिल जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वी बैक व्हेन आई वाज इन इंडिया। तो वहाँ पे अब कोई नहीं है रास्ते में, और गाड़ी आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो उसकी ट्रेनिंग तो हमने ली नहीं, हम लेते ही नहीं, गर्ल का वो एक बेनिफिट होता है ना। तो वही था समझो। तो फिर देखा तो फ़ोन बैटरी भी लो थी, और इट वाज लाइक ऐसा लग रहा था बैड टाइम शुरू हो गया है अब। तो उसी टाइम पे आई थिंक एक डिलीवरी ड्राइवर जस्ट जा रहा था वो बाजू में से, एंड देन उसने क्या किया, रुका और उसने मुझे अपने जंपर केबल्स लगा के कार को फाइनली उसने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो कार तो स्टार्ट हो गई। एंड देन आई वाज सो हैप्पी, और मैंने उसको आई ऑफर्ड हिम सम मनी, बट ही वाज लाइक, उसने एक छोटी सी स्माइल दी और उसने बस इतना कहा कि कभी किसी और को हेल्प कर देना। दिस लाइन, वाओ, पता नहीं यार, जब भी मैं किसी से मिलती हूँ कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट लाइन्स देके जाते हैं जो मेरे दिमाग में बैठ जाती है हमेशा। आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा है, आई मीन ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि कभी किसी और को हेल्प कर देना, देन मैंने कहा चलो बढ़िया है अब तो, एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच, और फिर मैं चली गई घर। और उसके बाद कुछ महीने बाद ऐसे ही मैंने देखा, एंड वो यूजुअली ये आर्मी कैंटीन्स वगैरह होते हैं तो उसमें गई थी मैं। एंड वो अब जो आर्मी में ज्वाइन होने वाले थे वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दे आर लाइक वेरी यंग किड्स हु टेक ट्रेनिंग ऑन दैट। तो वहाँ पे उन्होंने ख़रीदा एक बहुत ही लाइक एक मूव का एक स्मॉल ट्यूब, एंड देन मेरा बिलिंग हो चुका था, मैं आगे थी, बट आई वॉज वॉचिंग देम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि यंग पीपल लाइक हु आर कमिंग इन टू एन आर्मी एंड दे आर डूइंग ग्रेट। तो फिर वो देख रही थी मैं, एंड उनका कार्ड नहीं चला, एंड देन दे ट्राइड फोन पे, गूगल पे, इट डिड नॉट वर्क। एंड देन दैट बॉय वॉज वो किसी को कॉल कर रहा था कि भैया इसमें ना पैसे डाल दो, मैं आपको आने के बाद देता हूँ, ये वो बात चल रही है। एंड द बिलिंग काउंटर पर वो लेडी वेट कर रही है। तो मैंने देखा और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, और देन आई ऑफर्ड हिम कि चलो मैं दे देती हूँ। तो फिर वो कहने लगा नो, मुझे एक तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं ऐसे हु इज़ गोइंग टू जॉइन, मतलब जो आर्मी में मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, एक तरफ मुझे वो अच्छा लग रहा था, मैं सोच चलो अच्छा ही लग रहा था, मतलब किसी की हेल्प कर देते। तो फिर नहीं, लेकिन वो किड्स इतने स्ट्रॉन्ग किड्स, वाओ, मतलब उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं समझो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, माई ब्रदर इज़ गिविंग मी सो इट्स फाइन। तो मैं बहुत मैंने कहा नहीं इट्स फाइन, और फिर मैंने चलो दे ही दिया, मतलब मुझे उनको वेट कराना मुझे पसंद नहीं आया, एंड देन मैंने कहा ले लो चलो। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द वेट टाइम, बट इट्स अबाउट कि उस टाइम पे आप क्या करते हो जब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, एंड यू फील कि शायद यहाँ पे कुछ मदद हो सकती है, कर देनी चाहिए, है ना? ज़्यादा सोचते रहेंगे ना वो मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उन लोगों को। तो हर फेवर का रीपेमेंट सेम पर्सन को नहीं देना होता है, इट्स लाइक ऑलवेज आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी कोई और हेल्प कर देता है। तो इट्स लाइक काइंडनेस को आगे पास करते जाते हैं हम लोग, सो दैट्स हाउ द चेन नेक्स्ट लिंक एक लिंक बनता जाता है वो। और हाँ, काइंडनेस स्मॉल हो सकती है बट रेस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए, शो ऑफ के साथ नहीं, यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हाँ मैं ये कर दूंगा और सबको दिखाने लग जाते हैं कि मैंने ये किया वो किया, बट दैट्स नॉट कॉल्ड काइंडनेस, दैट्स शो ऑफ. बट अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप करके यू नो दैट्स कॉल्ड इट्स सो प्योर, द काइंडनेस इट्सेल्फ इज सो प्योर फॉर्म. तो शायद ज़्यादा लेक्चर दे दिया है मैंने. वेल आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में यू नो सबको बताना है, यू नो स्पेशली रेडियो नायरा विच इज़ एन एक्सक्लूसिव इंडियन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो आप हमारे साथ एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो हमें कॉल कर सकते हैं 919-999-8595 पर, और मैं बहुत सारी बातें बताने वाली किस तरीके से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4, 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर। वेल, मैं बात कर रही थी कि आप किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं विथ रेडियो नायरा। सो रेडियो नायरा में है आप रेडियो स्पॉट्स यानी कि रेडियो एड्स अपने बिजनेस के बारे में। अगर आपका नया बिजनेस है या फिर मीडियम साइज या फिर जो भी है, यू नो, इफ यू वांट टू टेल अबाउट योर बिजनेस टू एवरीबॉडी, टू द ऑल द इंडियन कम्युनिटी हियर इन RTP, देन डेफिनेटली दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन कॉल अस एट 919-999-8595 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@radionaira.com पे। और इसी के साथ अब ऑलरेडी वी आर एट 559, सो लेट्स वेट फॉर अनदर मिनट एंड देन विल बी एट 6 o'clock शो। लाइक 2 hours में 1 घंटा हो चुका है, छोटी छोटी स्टोरीज बताते बताते कहाँ तक पहुँच गए यार, 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला। मतलब अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल करिए या मैसेज करिए एट रेडियो नायरा USA पे। आप इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करिए एट 919-999-8595 पर। वेल, विल बी बैक सून राइट आफ्टर द सॉन्ग एट 6 o'clock शो।

101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9, Dairam mein kho jao, Pakka Desi. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। वेल, हम आज बात कर रहे हैं उन छोटी छोटी स्टोरियों की या फिर एक्ट ऑफ काइंडनेस की, जिसकी वजह से हमने कुछ सीखा या फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ या फिर एक मुस्कान आ गई अपने होठों पे, राइट? वेल, तो सोशल मीडिया के टाइम में हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया जो आजकल इतना ट्रेंड हो चुका है, स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर फेसबुक में फ़ोटोज़ या फिर इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ या फिर पोस्ट या फिर मतलब हर चीज़ एक सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है। अब इन्हीं सोशल मीडिया के बीच में मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था और डेफिनेटली उसने मुझे इतना डरा दिया कि आप सबके साथ मैं वो शेयर करना चाहूँगी। इट्स अ सीरियस थिंग बट हाउएवर इट कैन बी कंट्रोल एज वेल। सो ये है पेरेंट्स और बच्चों के लिए। तो मैंने वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था और उसमें उसने कॉल किया था, ही वॉज ए साइबर सिक्योरिटी एजेंट समझिए या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी है, उन्होंने उसका कॉल था। वो इंस्टाग्राम पोस्ट को ही देख के मैं आपसे बोल रही हूँ, ये हुआ था एंड उसने शेयर किया ये सब कि क्या होता है आजकल, यू नो, अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, यू नो, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू किड्स और पेरेंट्स, क्या किस तरीके के होते हैं। तो फिर काफ़ी सारे हुए, लाइक पासवर्ड अनलॉक हो जाना या फिर यू नो ऑल दीज यू नो कुछ भी शेयर, पिन शेयर हो जाना या फिर रॉन्ग वेबसाइट क्लिक कर देना, ये सब। बट नॉट दैट, यू नो, ही टोल्ड फ्यू फैक्ट्स अबाउट क्या हो रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे। यू नो, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताती हूँ कि एक तो ये है कि बच्चे जो हैं वो पहले क्या होता था, जो फ़ोन्स वगैरह नहीं थी तो हम लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में या फिर यू नो दूसरे बच्चों से हम लड़ते थे या फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत बुलिंग हो जाती थी, जो भी होता था, बट वो स्कूल तक ही सीमित थी, राइट? बट आफ्टर दैट जब हम घर पहुँचते थे तो भी भूल जाते थे उसको, क्या हुआ, बस वो स्कूल तक ही था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वैसा नहीं है। अब जो है, अब जब बच्चे हैं उनके पास फ़ोन्स हैं, उनके पास टैब्स है, सब कुछ, यू नो, एवरी थिंग इज़ सो एक्सेसिबल, इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल टू बी ऑनेस्ट। तो फिर उस हिसाब से अब वो कैरी करते हैं उसको, यू नो, दे कैरी एवरी थिंग, इंस्टाग्राम को कैरी करते हैं वो। और स्कूल में जो भी यू नो दूसरे बच्चे अगर उससे सता रहे हैं, जो भी है, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट, दे पोस्ट इट ऑन देयर सोशल्स एंड दे पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम रील्स पे, वो मीम्स बना देते हैं उस बच्चे के ऊपर या फिर ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, यू नो, ये या फिर फोटोज शेयर कर देते हैं उस तरीके के, और वो व्हाट्सएप में शेयर होता है या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर होता है, लॉट ऑफ फेसबुक पे शेयर होता है। तो उस तरीके से, मतलब इवन दो अगर वो बच्चा इग्नोर करना चाहता है या फिर भूल जाना चाहता है कि कल क्या हुआ था, ही कैन नॉट फॉरगेट, ही विल रिमेंबर इट, क्योंकि सोशल इंटरनेट सब दिखा रहा है उसको ना, एवरी टाइम इट इज़, वो दिख रहा है उसको, हमेशा मैसेजेस आ रहे हैं, उसको दिख रहा है और वो भूल ही नहीं सकता, भूलना चाहे तो भी नहीं भूल रहा है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ठीक है, जो हुआ हुआ स्कूल में, लेकिन आप भूल जाओ ना इसे, इट्स ओके, इग्नोर इट। लेकिन हाउ विल ही इग्नोर इट व्हेन ही इज़ कैरिंग यू नो विथ हिम, ये इम्पॉसिबल है, राइट? तो वो चीज़ एक बहुत ही, मतलब ये क्या बोलते हैं, इट्स लाइक खौफ है कि बच्चे इस तरीके के, यू नो, इट्स लाइक ए टॉर्चर फॉर देम, राइट? बच्चे जो है इस तरीके के, दे गोइंग टू डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ों को सुन सुन के उनके बारे में वो ही देख रहे हैं, उन रील्स बन रहे हैं या फिर यू नो इमेजेस पे कुछ भी लिख रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सो मच ऑफ हर्टिंग हो जाता है उसके, वो समझ नहीं पाते हैं पेरेंट्स। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों पर कि वो उनसे पूछ ले कि क्या हुआ है, कहाँ है, तुमने कुछ देखा सोशल पे, मतलब अब थोड़ा सा ना, पहले क्या होता था, सब कुछ ठीक है, ओके ठीक है, इतना मतलब बहुत ही वर्बली हो जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप डेफिनेटली उनके फ़ोन वगैरह चेक करें, उनसे पूछें कि क्या हुआ है, उन्हीं को दिखाएं, बताए कि इसके बारे में अगर कुछ शेयर करना है तो करें, मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग जो उसने कहा कि इंटरनेट पर ज़्यादा क्या शेयर होता है, तो इट्स लाइक जस्ट अ नॉर्मल टॉक कॉन्वर्जेशन नहीं, इट्स अबाउट द स्क्रीन शॉट्स। सो ही शेयर्ड अ स्टोरी वेयर यू नो कि एक लड़का लड़की इन द स्कूल, हाई स्कूल, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, तो
मतलब उनके जो चैट्स थे वगैरह एवरीथिंग वाज स्क्रीनशॉट, मतलब एक दूसरे के स्क्रीनशॉट्स लेके, और जैसे ही उन दोनों के बीच में दोस्ती ख़त्म हो गई तो समझो वो स्क्रीनशॉट शेयर होना शुरू हो गया. दे स्टार्टेड शेयरिंग इट विद अदर फ्रेंड्स इन द स्कूल एंड उस तरीके से वो एकदम मतलब इतना शेयर हो गया कि ये दोनों बच्चे वॉट विल दे डू. आई मीन कितना बुरा लगता होगा ना जब उनके पेरेंट्स वगैरह देखते होंगे या फिर ये बच्चे देखते होंगे, तो दे गो इन टू डिप्रेशन. तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इंटरनेट की वजह से और ये जो सोशल मीडिया पे जो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है या फेसबुक अकाउंट्स है, डेफिनेटली यू नो हर पेरेंट्स को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं. एंड मेरी तरफ से मैं एडवाइस नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबको टाइम देना चाहिए फॉर किड्स और उनके साथ बहुत अच्छा यू नो बी वेरी वेरी फ्रेंडली, क्योंकि अगर आप उसे डांटना शुरू करोगे ना तो वो आपसे शेयर करना क्या, वो तो बोलना भी भूल जाएगा. मतलब आपको बोलने का सोचेगा भी नहीं वो कि मुझे बोलना है, नो माई आई नीड टू टेल माई डैड और मॉम जो भी है, दे विल नॉट टेल. तो ये बहुत ही मतलब इंस्टाग्राम का एक पोस्ट मैंने देखा था और उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन थी. देर इज़ अ लॉट बट आई थिंक आई लिमिट टू दिस एंड हाउ एवर आई थिंक दिस गिव्स अ क्लू कि आगे और क्या क्या हो सकता है और उन चीज़ों को ध्यान में रखें. और एक चीज़ ये थी कि आजकल बच्चे जब बच्चे क्या आई थिंक बड़े भी दूसरा अब इंस्टाग्राम उस पर स्क्रोल करते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे या फिर किसी की डीपी फोटोज़ देखते हैं वगैरह वगैरह, उनके हॉलिडे की या फिर यू नो उन कुछ अचीवमेंट की या फिर उनके ड्रेसिंग सेंस की जो भी है कुछ भी देखते हैं. तो वाई आर यू वरीड मैन, मत कुछ नहीं, वो सब सोशल मीडिया है, रील, वी कॉल इट रील राइट, एवरीथिंग इज़ रील. उसको देख के बुरा मान जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि और अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. स्पेशली टीनेजर्स वो तो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो देखो मेरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि उसके पास ये है, ही नो ही गॉट दिस कार, कल उन्होंने वो घर खरीदा. बड़े लोग तो ऐसे बात मतलब पेरेंट्स वगैरह इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने ये घर खरीदा, और उन पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. यू नो इट्स नॉट लाइक दैट यार, सबका टाइम होता है, जिसको जो मिलना होता है वही मिलता है, दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये सब मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे एंड आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू ऑल, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर किड्स एंड देयर फ्यूचर और पेरेंट्स को डेफिनेटली ये सब ध्यान में रखना चाहिए. इट्स स्क्रोलिंग इज़ गुड बट फॉर द गुड कॉन्टेंट, नॉट लाइक दिस. चलिए बहुत हो गई बातें और हम मिलेंगे फिर इस गाने के बाद. इट्स अ फनी सॉन्ग, अच्छा है ये.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर। और हाँ दोस्तों, आप तेलुगु में भी सुन सकते हैं एट 99.9 एफएम एचडी 3 पे। सो वी आर एवरीवेयर, हिंदी में सुनो या तेलुगु में सुनो। वेल, वी आर एवरीवेयर बोलने के साथ साथ मैं कहूँगी वी आर स्ट्रीमिंग ऑन radionaira.com। आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी सुन सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके फ़ोन में, अगर आप गूगल फ़ोन यूज़ करते हैं, प्लीज़ गो टू गूगल प्ले एंड डाउनलोड रेडियो नायरा ऐप, एंड आप हमें ऐप से भी सुन सकते हैं या फिर ऐप स्टोर पे रेडियो नायरा ऐप। देन अगेन यू कैन लिसन अस फ्रॉम आईफोन एज वेल। और आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलेक्सा या हो या फिर ओके गूगल हो या फिर हे सिरी, आप हमें कहीं भी, कहीं पर, कहीं से भी सुन सकते हैं। वेल, वो है तो हम हर जगह हैं और हम आपको सुनते हैं, और हम यही भी चाहते हैं कि आप भी हमें सुनाएं, आप भी हमें मैसेज करें और बताएं आपको कैसा लगता है ये शो। और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम करना पड़ेगा एट रेडियो नायरा USA, और फेसबुक भी सेम एट रेडियो नायरा USA पे। वेल, हम बात कर रहे थे छोटी छोटी कहानियों की, जो कि यू नो इट हैज़ चेंज योर लाइफ और मे बी इट हैज़ क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ। जहाँ भी वन काइंड एक्ट और वन हॉनेस्ट स्टेप कहूँगी मैं, वो अगर कुछ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 919-999-8595 पर। वेल, लास्ट नाइन्थ को, अगस्त 9th को प्रभुदेवा जी का लाइव शो हुआ था, डांस कॉन्सर्ट। इट वॉज सो अमेजिंग, मैं गई थी वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो यू नो ही मेड एवरी वन डांस फॉर श्योर, इतना अच्छा था कि उस वाइब को लेके मैं नेक्स्ट डे भी कैरी कर रही थी। एंड ही इज़ सो हम्बल। हम काइंडनेस की बात कर रहे हैं तो मुझे अचानक से याद आया कि व्हेन आई वाज टेकिंग इंटरव्यू विथ प्रभुदेवा सर, एंड ही इज़ सो हम्बल, सो काइंड, इतने प्यारे तरीके से, विदाउट यू नो बीइंग, मतलब वो इम्पेशेंट हुए ही नहीं। जो भी पूछ रहे थे उनका, उसका सवाल एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो कह रहे थे। यू नो ही गेव टाइम टू एवरी वन, इवन दो ही वॉज टायर्ड, नेक्स्ट डे भी वो सबसे मिले। यू नो दैट्स हिज, व्हाट डू वी कॉल, कमिटमेंट कहूँ या फिर काइंडनेस कहूँ, बट ही इज सो डाउन टू अर्थ पर्सन। मिलने के बाद ही पता चला मुझे कि वो कितने कितने सॉफ्ट पर्सन, कितने हम्बल पर्सन है। तो ऐसा होता है कि हम कभी कभी जब किसी से मिलते हैं ना, तो वहीं पे एक ये क्या बोलते हैं, एक स्पार्क होता है, एक वाइब स्टार्ट हो जाती है कि यस ही यू नो यू वॉन्ट टू टॉक टू हेम और यू वॉन्ट टू टॉक टू हर, इस तरीके का एक एक एक एक स्मॉल, एक छोटा सा वाइब सर्कल बन जाता है आप ही, आपके पास। और एंड देन यू मेक दोज कनेक्शंस एंड यू टॉक टू देम, यू फील गुड, राइट? तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा कभी ना कभी। यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप यू नो जो एवरीडे आप जिससे मिलते हो शायद उससे हो, ऐसा नहीं, लेकिन कभी ना कभी यू नो आपके ट्रैवल में या फिर आपके ऑफिस में या फिर बाहर कहीं भी यू मीट समबडी एंड देन यू फील लाइक कि बहुत अच्छा लगता है आपको, यू फील लाइक शेयरिंग इट विद देम, कुछ बातें करें हम और यू नो कुछ टाइम बिताए उनके साथ, इस तरीके का यू नो फील होना शुरू होता है। तो वेल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं मिली प्रभुदेवा सर से, तो फिर मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि ही इज़ सो काइंड, बहुत ही ऐसा लग रहा था बात करते जाए और सवाल करूँ मैं और पूछूँ उनके बारे में। वेल, उन्होंने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया था, वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा, उनके बारे में अगर कहूँगा तो बहुत ही पेशेंस से उन्होंने, जितनी देर तक मैं सवाल करती गई वो आंसर करते गए उसका, तो वो बहुत अच्छा था। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि नेक्स्ट डे, मतलब आफ्टर डूइंग डांस फॉर 3 to 4 hours, आप नेक्स्ट डे भी रेडी हो सबसे मिलने के लिए। हाउ गुड दैट वुड बी, राइट? कितना अच्छा लगा होगा सबको। और आई थिंक ग्रेट, सो मच रेस्पेक्ट टू हिम एंड उनके क्रू जो भी थे, नोएल, इवन नोएल इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा डांस किया था उन्होंने। वो तो काफ़ी, मतलब उनके सॉन्ग्स, उनके उनका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम, ऐसा कहते हैं ना, एकदम बारीकी से किया गया है परफॉर्मेंस, परफॉर्म किया गया उस तरीके से उन्होंने किया था। इनफैक्ट अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, सानवी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, एंड देन लॉरेंस एंड सुनीता भदौरिया, यस दिस वन मोर गर्ल, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, दृष्टि, या दृष्टि, दृष्टि, रघुविंद्र, रघुवरन कुछ था नाम, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। शी इज़ लोकल,
नॉट हियर बट यश इज़ फ्रॉम USA शिकागो एंड उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डांस किया था. तो सब लोगों ने सबकी डेडिकेशन और वो जो क्या कहते थे कोऑर्डिनेशन जो थी. और यस ऑफ कोर्स द लोकल डांसर्स हमारे RTP से जिन्होंने प्रैक्टिस करके उन लोगों उन आर्टिस्ट के साथ किया था. वाओ मैन कुडोस टू यू ऑल जिन्होंने भी परफॉर्म किया था सबको. आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ पीपल लोकली हु प्रैक्टिस्ड एंड देन यू नो हु गॉट सेलेक्टेड एंड देन जिन्होंने उनके साथ मतलब प्रभुदेवा सर के साथ जिन लोगों ने भी डांस किया था. अमेजिंग मैन क्या एनर्जी थी. सबको बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आप सब लोगों ने जो पूरी ऑडियंस थी 2200 पीपल आई गेस जितनी भी ऑडियंस थी उन सबको आपने नचाया सबको इतना खुश कर दिया कि वो बाहर आने के बाद भी देवर जस्ट इन द वाइब उसी वाइब में थे वो और सब बहुत खुश थे. नो वन वर डिसअपॉइंटेड बच्चे सब एवरी वन वर इट वॉज लाइक क्रिस्प ऐसा कहूँगी मैं. मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू नो द वीकेंड वेंट सो वेल एंड अब नेक्स्ट वीकेंड भी आने ही वाला है आफ्टर टुडे आफ्टर टुमारो. और उसके लिए क्या क्या तैयारी है आप सबकी. वेल हर वीकेंड को स्पेशल होना चाहिए ये नहीं कि रूटीन हाँ चलो अब हम ना सैटरडे सो ही जाते हैं ख़त्म क्योंकि 5 दिन हमने बहुत काम कर लिया है. ऐसा नहीं यार कुछ तो करो मज़ा करो कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले. यू नो दैट विल कीप योर वीकडेज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी फ्रेश. सो वीकेंड इज़ फॉर रिफ्रेशमेंट गाइज. चलिए आगे सुनते हैं इस गाने को और इसके बाद लेट्स गेट बैक ऑन आवर कॉन्वर्सेशन अबाउट स्मॉल स्टोरीज बट बिग लेसन्स एंड इम्पैक्ट्स.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, और तेलुगु में भी सुन सकते हैं विच इज़ एट 99.9 FM HD3 पर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्टोरीज, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड विच हैज़ लाइक जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो हमारी लाइफ में, या फिर हमें बहुत अच्छा लगा हो. यू नो, इम्पैक्ट से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि हमें जिससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो वो चीज़ करके, राइट? और ये काइंडनेस के लिए ना कोई क्या बोलते हैं उसे, इट्स नॉट ए टाइम कि इस टाइम पर मुझे काइंड रहना है, इस टाइम पे मुझे काइंडनेस दिखाना है, ऐसा नहीं होता है. इट जस्ट हैपन, एंड उस मोमेंट में आप कर दोगे ना, देन यू आर लाइक यस दैट्स व्हाट आई डिड एंड यू विल फील सो हैप्पी गुड कि ये तो मज़ा ही आ गया, है ना. वेल, इसी तरीके से ना काइंडनेस सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ ना किस में होता है, वो होता है मॉम में, राइट? माँ में. और मॉम हु इज़ सो काइंड, वो कुछ भी करती है अपने बच्चों के लिए, दैट्स वॉट आई सी. यानी कि अपनी फेवरेट साड़ी भी दे देती है. मतलब मैंने देखा है मेरी मॉम को कि ना इतने संभाल के रखी हुई साड़ी को ना हम बोलते हैं मम्मी ये तो पुरानी हो चुकी है, आप क्यों ना मुझे ड्रेस सिल दो इसमें. ऐसा होता था. तो मतलब हमारी मॉम सोचे भी ना, कुछ नहीं सोचती थी. शी वॉज लाइक ओके, यू नो दे लाइक डेट एंड जस्ट शी विल टेक आउट दी साड़ी एंड उसका जो भी करना था वो कर देती थी. तो उस तरीके से होता है. आई थिंक मॉम इज़ लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, लाइक मॉम इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू एवरी वन ऑफ अस कि उनके उनसे सीखे हम काइंडनेस. सबसे पहले अगर सीख सकते हैं किसी से काइंडनेस तो आई थिंक वही है. तो उसी तरीके से मुझे याद आया, मतलब आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग कि मॉम की एक अच्छी सी साड़ी थी और वो इतनी पुरानी हो चुकी थी, बट स्टिल यू नो इट वॉज सो आयरन एंड उसको संभाल के रखा था मॉम. एंड देन वन डे आई आस्क्ड कि मम्मा ये साड़ी कब की है, ये मतलब बहुत पुरानी साड़ी थी. एंड ऑल ऑफ सडन मैंने देखा और मैंने कहा मम्मी ये कब की है साड़ी, आपके पास इतने सालों से आई डोंट सी यू वेयरिंग, और क्या है. तो ना मेरी मम्मी ने एक तो बोला कि नहीं वो साड़ी का ना बहुत ज़्यादा है बॉर्डर, वो पहले ज़माने में कैसा होता था, बहुत ही लाइक 3 इंच वाला बॉर्डर होता था, राइट? तो मम्मी ने एक कहा, मैंने कहा नहीं मम्मी 3 इंच बॉर्डर वाला साड़ी भी पहनते हैं आप, आपने इसको बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही संभाल के रखा है, बताओ मुझे. तो देन माई मॉम मतलब शी इतनी मतलब छोटी सी स्माइल देती हुई, एकदम शाई फीलिंग करती हुई, मैंने कहा क्या हुआ मम्मी कब की है साड़ी. एंड देन शी सेड कि ये ना हमारी शादी की साड़ी है, मैंने शादी वाले दिन पहनी थी है, अपनी शादी में पहनी थी है, माई मॉम गिफ्टेड मी दिस. एंड देन लाइक वो मुझे पता ही नहीं था पता है. एंड लाइक जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये साड़ी शादी मेरी शादी की साड़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब देखो ना कितना संभाल के रखते हैं हर चीज़ को हमारे मॉम, राइट? हर चीज़ उनको अगर कोई गिफ्ट करे ना तो बस समझो कि बस हो गया. मतलब वो उस चीज़ को ऐसे संभाल के रखती है, वो यूज़ भी नहीं करती एकदम संभाल के कबर्ड में रख देंगी और उसे यूज़ भी नहीं करेंगे. लाइक शी विल बी लाइक ये मुझे उसने दिया, नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट. एकदम उसको इतने प्रीशियस वे में उसको देखती है, रखती है अपने पास कि क्या बताया. मतलब उनकी मेमोरीज में चीज़ें भी इतनी फ्रेश, इतनी संभाल के रखी गई है. पुरानी चीज़ें भी आज बहुत न्यू लगती है, राइट? हर चीज़ कोई भी चीज़ ले लो, छोटी सी चम्मच ले लो या फिर एक अच्छी सी साड़ी ले लो, हर चीज़ को वो संभाल के रखती है. एंड वेरी काइंड, आई थिंक मॉम इज़ द काइंडेस्ट फॉर्म. लाइक अगर काइंडनेस की कोई मूर्ति होती ना तो वो मॉम ही होती है. आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, तो जब भी मैं मॉम के बारे में बात करती हूँ ना, पता नहीं ऐसा इमोशनल वाला थिंग आ जाता है मेरे सर में, दिमाग में. आई डोंट नो, आई मिस माई मॉम अ लॉट, बहुत ज़्यादा. मैं बहुत झगड़ती भी हूँ मेरी मॉम से, बट स्टिल यू नो कितना भी झगड़ लो यार, मॉम मॉम होती है. हम उनको तो मतलब कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं. इट्स लाइक दे शुड बी देयर. जैसे कि होता है ना घर में, अगर मॉम ना हो ना तो पता नहीं हर चीज़ उल्टी पलटी लगती है मुझे तो. हर चीज़ कुछ समझ में ही नहीं आता है, कहाँ पे क्या रखा है, क्या करूँ, करना क्या है, मतलब आज का स्केड्यूल क्या है. नथिंग यू कैन प्लान विदाउट योर मॉम. तो ये है सब मॉम के लिए. ऑल द मॉम्स इन द वर्ल्ड, यू गाइस आर ग्रेट, अमेजिंग एंड सुपर्ब, मोस्ट पावरफुल एसेट वी गॉट. तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना. नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए,
ओके, दिस इज अ वंडरफुल फनी सॉन्ग. अगेन इट्स ब्यूटिफुल. चलिए माइंड रिफ्रेश कर देते हैं अब इस गाने के साथ, ज़्यादा इमोशनल नहीं जाते हैं. एंड लेट्स गो टू प्ले नंबर.

0: Hello.
1: Hello, Ishami.
0: Well, we have a caller. Let's talk to him.
1: Hello, Ishami.
0: Hi, who is this talking?
1: I am Sangram. Hope you recall my name or remember because I called you same time last week. How
0: Oh,
1: are you?
0: yes, of course. Yeah, I remember. How are you, Sangram?
1: I'm good. Just a minute, like it's a time where I spend time in my car waiting for my kid. और आपकी बातें सुन रहा था. आपने जैसे बिल्कुल सही बोला कि जब काइंडनेस है तो अपनी सबसे पहले दिमाग में आता है माँ मम्मी, राइट? उसके जैसा काइंड कहीं नहीं रहता, राइट? आई थिंक दैट्स द ओनली पर्सन हु इज वेरी सेल्फलेस आज के
0: बिल्कुल
1: दुनिया में. और सब और एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि लास्ट वीक आई गॉट राफेल और प्रभु देवा के कॉन्सर्ट में गया था. सो थैंक यू वेरी मच. इट वॉज अ काइंड एक्ट एंड आई
0: मोस्ट
1: एंजॉयड द शो वेरी
0: वेलकम.
1: मच. सो थैंक यू वंस अगेन.
0: I'm so glad
1: और
0: that you
1: दूसरी चीज,
0: enjoyed.
1: यस आई डिड एंड अगेन थैंक यू. ग्रेट काइंड ऑफ ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस. और एक चीज वैष्णव में बोलना चाहता था, राइट? आज के जमाने में अगेन आई थिंक यू कैन कोरिलेट इट, राइट? तो काइंडनेस इज इन जीन्स मेरे हिसाब से, राइट? क्योंकि काइंडनेस आपको आपके पेरेंट्स से ही आती है मोस्टली नेचर के हिसाब से. और ओकेजनली आप वो कम ज्यादा उसको इम्पार्ट करते हैं. बट जो मेरा पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एक मेरा दोस्त था. जब मैं यूएसए में पहली बार आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. मतलब आई वॉज जस्ट, और आपको पता होगा क्रेडिट हिस्ट्री और ये सब चीज होंगे. सो दैट पर्सन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ही रियली को साइंड फॉर माई कार. एंड बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस आई वॉज एबल टू गेट माई फर्स्ट कार विथ विथ क्रेडिट एप्लीकेशन. सो अगेन
0: वाओ
1: काइंडनेस इज अ एक्ट ऑफ गिविंग. और हमको ऑलवेज हम अपने बारे में सोचते, राइट? जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि आप अगर भूखे हो तो आपको आपके रोटी में से आधी रोटी आप किसी को देना चाहिए, राइट? दैट्स अ काइंडनेस. तो आजकल के जमाने में मुझे लगता है कि वो थोड़ा हम लोग थोड़ा ज्यादा मतलबी हो गए या पता नहीं, बट काइंडनेस हमें वो दिखाना पड़ेगा. मैंने काफी चीजें बोली बट अगेन आप अपनी तरफ से बोलिए वैष्णवी जी.
0: बिल्कुल बिल्कुल संग्राम जी, आपने सही कहा. और ना इसी के साथ मुझे याद आया, तो ऑलवेज ना माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि ना तुम किसी की मदद करोगे ना, डोंट एक्सपेक्ट कि उससे ही मदद मिलेगी हमें. इट कैन बी फ्रॉम
1: जी जी
0: एनीवन,
1: जी
0: यू नो. हमेशा माय मॉम यूज्ड टू टेल कि तुम
1: करेक्ट
0: ऐसे मत
1: एग्जैक्टली
0: सोचो कि अभी तुमने किसी को खाना खिलाया या फिर घर बुलाया एंड ऑल दैट, उसका मतलब ये नहीं है कि उसी से कुछ होगा. नथिंग लाइक दैट. वर्ल्ड
1: बिल्कुल
0: इज वर्ल्ड इज देयर टू
1: एग्जैक्टली
0: टेक केयर ऑफ यू. तो इस तरीके से होता था, मतलब माई मॉम इज टू टेल मी ईच एंड एवरी थिंग कि ऐसे करोगे तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट मत करना, वैसे मत करना, ऑलवेज लाइक. तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद है अभी भी, एंड आई डू फॉलो. एंड या जैसे आपने कहा, थोड़ा सैचुरेट हो गया है लोगों में. आई वॉन्ट से एवरी वन,
1: राइट.
0: लेकिन या आई मीन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बींग काइंड इज नॉट हार्मफुल.
1: एग्जैक्टली इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट, राइट? और उससे जो आपने बोला कि उससे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का है, राइट? मतलब नेकी कर और दरिया में डाल, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा. वो जस्ट आप वो इंस्टिंक्ट पे आपको दिमाग में आता है और आप जस्ट उसको कर दो, राइट? और वो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा यू विल नेवर गेट इट. और बिलीव मी वो जैसे आपने बोला कि उस फॉर्म में नहीं बट किसी ना किसी फॉर्म में आपको वापस देगा. मतलब द यूनिवर्स विल हेल्प यू टू यू नो डू इट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेन यू नीड इट मोस्ट, उस टाइम पे डेफिनेटली आपको वो आपके जो गुड डीड्स है आपके काम में आएंगे. तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगेन इट
0: बिल्कुल
1: वेरीज फ्रॉम
0: बिल्कुल,
1: पर्सन टू पर्सन.
0: डेफिनेटली. बहुत अच्छी बात कही आपने. वेल, अच्छा लगा मुझे कि आपको यू आर लिसनिंग टू माय शो एंड आपने जो मैंने कहा उसको एग्री किया. वेल, दैट्स वंडरफुल संग्राम जी. सो आई एम सो ग्लैड कि आपने यू यू वेंट टू प्रभुदेवा सर शो एंड आपने एंजॉय किया. सो इट्स रियली गुड टू नो अबाउट
1: करेक्ट
0: दैट.
1: करेक्ट या एंड इट वाज ट्रीट टू वॉच हिम, राइट? डिस्पाइट ऑफ हिज एज एंड ऑल आई वाज यू नो
0: बिल्कुल.
1: अमेज्ड टू सी इट्स ट्रीट टू वॉच हिम. सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर यू नो गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू बी देयर. सो
0: वेल, यू आर द लकी विनर.
1: आई
0: आई
1: एम
0: मस्ट
1: सो
0: बी
1: लकी टू
0: थैंकिंग
1: हियर
0: रेडियो
1: सो
0: नाइट.
1: लकी या yeah, thank you very much for raffle and giving us opportunity, right?
0: All right, Sangram ji, thank you so much for calling. Aur aise sunte rahiye Radio Naira. We are so happy, and if you have any feedback, anything you want to share, any topic you want us to talk about, please hame batayega zarur. Aap hame message bhi kar sakte hain on Instagram, so ya fir call karke bhi bata sakte hain. Well, we'll be happy to, you know, do that.
1: All right, Vishnu. Yeah, I'm not Insta person, but I'll definitely, you know, prefer to chat or talk whenever possible. But please take care, and hopefully we'll talk again.
0: Thank you. Bye-bye. वेल तो ये थे संग्राम जी जिनसे हमारी बात हुई, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो शो, यू नो, वो गए थे शो में एंड उन्होंने बहुत इन्जॉय किया. और अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने भी काइंडनेस के बारे में बात करी. तो इट्स ऑलवेज लाइक, यू नो, गुड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो हमें लगता है वो थोड़ी सी मोटिवेशन कहूँ या फिर थोड़ा, यू नो, इट्स लाइक या इट्स गुड दैट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट्स इट गिव्स मोर पावर कि हम वो चीज़ करें, राइट? तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पुश मिल जाता है. Well, मैं एक और चीज़, well, we are already at 6:53, I think it's time to go. तो before I go, so हमारे दोस्त हैं समंदर, और उन्होंने हमें beautiful lines लिख के भेजी है, तो हम ज़रूर उन्हें कहना चाहेंगे. और well, मैंने पूछा था उनसे और उन्होंने भेज दिया, तो definitely I'm gonna before we end the show. So we had a great time today for 2 hours. बहुत अच्छा लगा बात करके, और especially talking about stories, छोटी छोटी स्टोरीज़ और काइंडनेस के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा. वी नीड योर फीडबैक एट रेडियो नारा यूएसए पे. एंड ये लाइंस कुछ यूँ हैं जो समुंदर ने हमें भेजी है, तो वो है, मैं बेच देता हूँ उन्हीं के ख्याल चोरी करके, उन्हें वो ना समझते हैं, मैं शायर कमाल का हूँ. I don't know how should I read it, but मैंने ऐसे पढ़ लिया है समंदर, don't mind that I am reading in this way. Well, मैं बेच देता हूँ उन्हीं के ख्याल चोरी करके, उन्हें वो ना समझते हैं, मैं शायर कमाल का हूँ. And then he says, तेरी ये दुश्मनी क्या ही करेगी हमारा, तुम दोस्त बनकर फिर दगा दो मुझे. ओके समुंदर, इट्स सो डीप. आप जब भी भेजते हो इतने डीप भेजते हो ना, ओ माय गॉड समुंदर, यू आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग राइटर. एंड वी आर, यू नो, ईगरली वेटिंग कि कब आप आएंगे और शो करेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बोला, आई डोंट नो मैंने सही बोला होगा, आप जब आओगे और अपनी भाषा में जब आप इसे बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा. यू नो, अ पोएट शायरी वगैरह, जो वो एक स्किल है, यू नो, एनी वन, सबको नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है वो एकदम शिद्दत के साथ उन लाइंस को जब पढ़ते हैं, इट लुक्स सो सो डीप. सो थैंक यू सो मच समंदर फॉर सेंडिंग दिस. एंड वेल, इसी के साथ चलिए, अब टाइम आ चुका है, वी आर एट 6:55, इट्स टाइम टू एंड. और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे ऑन थर्सडे बिटवीन 5 to 7 PM. तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कल आने वाला है लाइव शो जो है ज्योति का, वो है आज की शाम, ज्योति के नाम, शी इज़ बिटवीन 5 to 7 PM. तो ज़रूर ज़रूर उनका शो सुनिएगा. एंड देन ऑन सैटरडे यू हैव दिल से देसी विथ वैन. वो बहुत सारे कम्युनिटी वर्क करते हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं कि क्या हो रहा है. यू नो, हमेशा वो कहते रहते हैं बहुत कुछ हो रहा है RTP में. तो वो बहुत कुछ में वो बहुत सारी बातें करते हैं बिटवीन 12 to 2 PM. सो डोंट मिस दिल से देसी विथ वैन. ही इज़ वेल नोन, आई नो एवरीबडी नोज हिम. तो उनका शो ज़रूर सुनिएगा. एंड देन ऑन ट्यूजडे अगेन, नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे ट्यूजडे के साथ. वेल, मंडे देर इज़ नो शो, सो ट्यूजडे इट्स शो सुन जरा बाई प्राची. तो उनका शो है बिटवीन 3 to 5 PM. तो ज़रूर सुनिएगा. एंड देन कम्स माई फेवरेट इधर उधर की बातें विद अर्पित, विच इज़ फ्रॉम 5 PM to 7 PM ऑन वेडनसडे. एंड देन अगैन नेक्स्ट वीक थर्सडे, इट्स नन अदर दैन मी, दैट्स हेलो वैष्णवी शो विथ योर होस्ट वैष्णवी, जहाँ बातें होती हैं अनलिमिटेड. और नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा वो. तो मैं तो प्रिपरेशन में हूँ. वेल, आप भी वेट करिएगा. वेल, विल बी बैक अगैन नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, एंड यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी वीकेंड. एंड हाँ, हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगी, हमेशा मुस्कुराते रहिए. थैंक यू गाइज, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर होस्ट वैष्णवी.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडिवाना नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आज परा। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे चल रही है आपकी शाम? आज है थर्सडे, मतलब एक ही दिन बाकी है एंड इसके बाद चालू होने वाला है वीकेंड। एंड मैं यही कह रहा था कि यार मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा आज का नज़र आ रहा है। एंड थर्सडे का जो स्ट्रेस है उसे दूर रखना है। आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। अब वक्त हो चुका है रिलैक्स होने का। आपके गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि 10 बजे तक मैं रहने वाला हूँ आपके साथ। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है निर्वाणा नाइट्स। एंड एंजॉय करते हैं इस शाम का ये पहला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड एंजॉय दिस सॉन्ग। अरे अरे अरे ठहरिए, एक बात तो मैं आपको पूछना ही भूल गया। खुश तो होना आप, क्योंकि खुश रहने की कोई कीमत नहीं होती है। एंजॉय कीजिएगा।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: कुड़ी,

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। सबसे पहले बात मौसम और आपकी सेहत की। नॉर्थ कैरोलिना पॉइजन कंट्रोल ने आज एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। इस साल मतलब आज के दिन सांप से काटने के 595 मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं। गर्मियों के इस मौसम में अगर आप हाइकिंग या वॉक पर निकल रहे हैं तो झाड़ियों के पास थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि वही सांप ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड 595 जो मामले हैं वो ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, तो आप बात की गंभीरता को सोच सकते हैं। वही मौसम की बात करें तो आज भी सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना के भीषण गर्मी का टॉर्चर जो है वो जारी रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि शुक्रवार से मौसम करवट बदल सकता है और तापमान में गिरावट आ सकती है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि फिलहाल तापमान में गिरावट आ जाए तो कुछ ठंडक महसूस होगी, चील हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल प्ले करने जा रहा हूँ ये गाना आपके लिए, जो कि चील करने के लिए।

नॉर्थ कैरोलिना के लोकल गैर लाभकारी संगठनों को मजबूत करने के लिए $6 मिलियन की भारी सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और सुनते रहिए रेडियो नायरा।

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकी ने चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक से मुझे गाली बकते, पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश, बिजली बिलों में राहत। जी हाँ, ट्रायंगल क्षेत्र के लाखों उपभोक्ताओं के लिए आज की एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। दिग्गज बिजली कंपनी ड्यूक एनर्जी ने अपने प्रस्तावित बिजली दरों की बढ़ोतरी को अब करीब करीब आधा करने का फैसला लिया है। यानी अब स्थानीय निवासियों की जेब पर बिजली का बिल जो है वो उम्मीद से काफ़ी कम पड़ेगा। एंड टेक वर्ल्ड और आरटीपी से जुड़ी एक बड़ी बिजनेस अपडेट है। नॉर्थ कैरोलिना के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने टेक दिग्गज एप्पल के लिए जॉब क्रिएशन की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने पिछले साल अपने नए आरटीपी कैंपस के प्लान को अस्थायी रूप से रोक कर दिया था और अब राज्य सरकार ने उन्हें इस प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करने की मोहलत दे दी है। एंजॉय करते हैं अगला गाना

आप सुन रहे हैं रेडियो मेरा अपन वाला नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपका मूड रिफ्रेश। जी हाँ, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ तो चैपल हिल UNC के छात्र इन दिनों काफ़ी परेशान है। यूनिवर्सिटी में तेज़ी से बढ़ती छात्र संख्या के कारण विद्यार्थियों को अपने पसंद की इन डिमांड कोर्सेज में सीटें नहीं मिल पा रही है। कॉलेज प्रशासन अब इस ओवरक्राउडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से निपटने के नए रास्ते तलाश रहा है। जी हाँ, और स्पोर्ट के बारे में अगर बात करें तो हमारे स्थानीय बच्चों के लिए एक शानदार खबर, जॉनसन काउंटी की लिटिल लीग फुटबॉल टीम ने कल फ्लोरिडा को 4-0 से हराकर वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। आज दोपहर उनका मुकाबला केंटकी से होने जा रहा है। खुद गवर्नर जो स्टीन ने भी सोशल मीडिया पर टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है और आज के मैच के लिए शुभकामनाएं दी है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो में।